0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: मैंने पिछले 7 दिनों में ये सब है खोया।
1: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: सुनते रहिए रुनहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए नारा 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: सुनते रहिए सुनहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 49 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती है।

0: मैं दगड़ू हुईगुंड इंटरपोल से, जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा। आओ फुगड़ी डांस करें।
1: Poo bai poo, fugadi poo, you like me and I like you too. Poo bai poo, fugadi poo, you like me and I like you too. Poo bai poo, fugadi poo, you like

0: रॉकेट गाय फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट। अरे वारा बन मेरे जैसा बन, ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर।
1: Oh bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu, you like me.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि। सुनते रहिए नायरा 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।

इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब राले में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए सेकेंड एंड थर्ड मई को 4 पॉइंट्स राले धरम एयरपोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: Namaskar, this is Shankar Mahadevan.
3: Hi, this is Esar.
4: Hi, I'm Loy.
2: We're coming to Raleigh on Sunday, May 3rd for a show organized by Arvind and Neha Mahajan.
3: Looking forward to seeing all our fans after a long time in Raleigh.

0: your tickets now.
1: सुनते रहिए नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। इट वाज फोरकास्टेड दैट टुडे एंड टुमारो वी आर गोना बी हैविंग बारिश, एंड यस वी आर नॉट गोना बी कंप्लेनिंग बिकॉज दैट बारिश इज वेरी मच नीडेड टू फाइट हमारे यहाँ के ड्रॉट कंडीशंस। अब आज का दिन कैसा है, क्या हमारे जो वीकेंड के आउटडोर प्लान्स बने हैं उस पर बारिश होने वाली है, तो इट इज नॉट गोना बी अ टोटल कंप्लीट वॉश आउट। आज का दिन इज गोना बी अ लिटिल bit cloudy, it is going to be cool and it is going to be damp at times. So we have an area of low pressure which is riding along the NC coast, jiske chalte yes we have a good chance for showers mainly southeast of the triangle, but wo complete washout nahi rehne wale hai. It is just going to be thodi si showers and aake chale jayenge. Highs are going to be in the upper 50s to 60s, then highs are going to be in the upper 60s tomorrow as well, but kal barish nahi hai. Kal barish ke chances ekdam diminish hone wale hai. We have drier skies, we have sunny skies tomorrow, but aaj jo barish aane wali hai, hopefully it is still very much going to be helpful hamare yahan ke drought conditions ke liye, and it is kind of a little bit of a bad news for थोड़े बहुत आउटडोर फेस्टिवल्स विच आर प्लान फॉर दिस वीकेंड, स्पेशली जैसे कि हैम एंड यैम फेस्टिवल इन स्मिथफील्ड एंड एपेक पीक फेस्ट, बिकॉज वहां पे एक्चुअली बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट ऑफ द ट्राइंगल, वहां पे बारिश देखने मिलने वाली है, सो प्लान अकॉर्डिंगली। बाकी ऑब्वियसली आप वीकेंड प्लान्स के चलते मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपके प्लान्स बना सकते हैं। सुनते रहिए नायरा रैली ड्रम, मैं हूं आयुषी आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 41090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: ओह दिस इज रियली रियली बिग फॉर वीक मेड। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। एट्रियम हेल्थ इज प्लानिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ वीक मेड इन अ डील दैट कुड ब्रिंग एट लीस्ट $2 billion इन न्यू इन्वेस्टमेंट टू वीक काउंटी, ऐसा हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पता चला है। एंड इट इज ऑल्सो लेटिंग एट्रियम ग्रो उनका फुटप्रिंट इन द स्टेट। सो काउंटिंग अबस्टर्स आर नाउ एक्सपेक्टेड टू वोट ऑन अ मेजर ऑन मंडे एंड दिस वोट इज बेसिकली गोना बी हेल्पिंग देम पेव द वे फॉर दिस ट्रांजैक्शन की चीजें चलो ठीक है अब ऑफिशियल हो सकती है। दे आर काइंड ऑफ गिविंग एक अप्रूवल कि हाँ ठीक है आप ये कर सकते हैं। बट इसके पहले अगर हम देखें तो वीक मेड का जो बोर्ड है यूनानिमसली अप्रूव द ट्रांजैक्शन दिस मंथ इटसेल्फ अलाउिंग वीक मेड टू बिकम अफिलियटेड विद एडवोकेट हेल्थ, ऐसा काउंटी रिकॉर्ड्स के मुताबिक पता चला है। नाउ एट्रियम इज पार्ट ऑफ एडवोकेट हेल्थ विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट नॉन प्रॉफिट एकेडमिक हेल्थ सिस्टम्स इन द कंट्री एंड वीकमेड इज ऑल्सो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट हॉस्पिटल नेटवर्क्स इन द स्टेट। सो जब वो एट्रियम के साथ पार्टनर करेंगे दे कुड गेन ईजियर एक्सेस टू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड कैपिटल विच कुड एक्चुअली एक्सेलरेट उनका एक्सपेंशन प्लान्स थ्रू आउट द काउंटी बिकॉज ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू सीक यू नो they are seeking to compete with बाकी के providers जैसे कि UNC Health and Duke Health। तो ये transaction, ये deal जो है वो उनके लिए बहुत ही बड़ी रहने वाली है। That is why I said it is a big deal for WakeMed and मंडे को देखते हैं हमारे काउंटी कमिश्नर्स क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं, वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। बट येस दिस इज वॉट वी हैव अंडरस्टूड दैट दिस माइट हैपन। सुनते रहिए नारा राली ड्रम, मैं हूं आयुषी आपके साथ।

हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. Yesterday, more than 20 school districts in our state closed because, you know, thousands of teachers took to the streets to protest for increases to teacher pay. And also they said ki bhaiya school funding ka kya hone wala hai, kya nahi. Now, these are the demands that could cost billions at the levels people are asking for. बट उनका ऐसे कहना है कि दीज आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ द स्टेट्स चिल्ड्रन. तो कल उन्होंने बेसिकली बच्चों को छुट्टी दे दी थी बिकॉज टीचर्स नहीं आने वाले थे. एंड टीचर्स का इस रैली में बस यही कहना था कि टीचर्स नीड हेल्प. अगर आप टीचर्स को मदद करेंगे तो टीचर्स बच्चों की प्रॉपरली मदद कर पाएंगी. सो टीचर्स नीड हेल्प, स्टूडेंट्स नीड हेल्प, दे नीड लॉट ऑफ थिंग्स फिक्स, दे नीड लॉट ऑफ थिंग्स के लिए बहुत सारा पैसा. सो देर लाइक वी नीड एयर कंडीशनर्स फिक्स्ड नॉट कट्स. तो अगर हम इसके ऊपर प्रॉपरली बात करते हैं बैठ के तो इससे कोई सोल्यूशन निकलेगा, ऐसा बेसिकली उनका कहना था. अब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा स्टेट स्पेंड्स अबाउट $13,000 पर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस, मतलब स्टेट, फेडरल, लोकल. एंड इट इज अ फिगर दैट स्टेडली गॉन अप बट इट स्टिल रैंक्स टूवर्ड्स द बॉटम नेशनली. कि हम फिर भी हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर कम पैसा खर्च कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द नेशनल comparison. And that is why it is high time कि हमारे यहाँ के leaders इसके तरफ ध्यान दें कि भैया बाहर के costs बढ़ रहे हैं तो education के costs भी बढ़ेंगे, resources के costs भी बढ़ेंगे एंड उसके तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसको उतना funding देना पड़ेगा. So parents are also having some concerns over school funding. कि क्या कर रहा है, teachers की मांगे तो आप सुन नहीं रहे हैं, तो क्या होने वाला है. अब exactly what happened in yesterday's rally is के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, but फिलहाल इतना ही पे है. सुनते रहिए नायरा रैली ड्रम, मैं हूँ आयुषी आपके साथ.

0: Oh, it's open now. Yes, it is open. Hello, G. Welcome back. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. Well, guess what? What happened last week? That is on April 24th. हमें एक बहुत ही बढ़िया नया सुंदर सा हैंग आउट स्पॉट मिला है जो ऑलरेडी पिछले तीन दिनों में लोगों का लाइक फेवरेट बन गया है. एंड दैट इज द राचा बांदा फूड ट्रक. सो वहां पे आपको ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड फ्लेवर्स मिलेंगे एंड कुछ फ्रेश प्योर वेज खाना अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो दैट इज द प्लेस. इट इज मॉरिसविल्स दी हैंग आउट स्पॉट, न्यूएस्ट दी हैंग आउट स्पॉट नाउ. तो वहां पे आप आपके दोस्तों के साथ फैमिली के साथ बैठ के बस लाइक बातें कर सकते हैं. यू कैन सिप चाय, एंजॉय द फूड, एंजॉय द वाइब्स. एंड वाइब्स तो फॉर श्योर आपको वहां पे मिलेंगे. सो इट इज फ्रॉम वेंसडे टू मंडे 5 PM टू 10 PM एट 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल. सो आपको याद रखना है कि वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे ये 5 दिन आप जाके उसको बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं. एंड या वहाँ का पूरा जो आस्वाद है उसका जो पूरा लुत्फ है उठा सकते हैं. एंड यू कैन जस्ट यू नो गेट द मोस्ट ऑफ दिस न्यूएस्ट हैंग आउट स्पॉट इन मॉरिसविल. राचा बांदा फूड ट्रक इज नाउ ओपन. डू गो, हैव फन, एंजॉय द फूड, एंजॉय द चाय एंड एंजॉय आपके फेवरेट बॉलीवुड की गाने अलॉन्ग विद दैट. नायरा राली ड्रम पे मेरे यानी आयुषी के साथ स्टे ट्यून्ड.
1: सुर भी देसी है और स्टाइल भी. 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

देर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो कल की टीचर रैली में हाईलाइट किए गए. आपने ट्यून इन किया है नायरा रैली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सो टीचर्स आर नाउ फीलिंग द इयर्स लॉन्ग स्ट्रेन ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल्सो देयर इज अ ड्रेन ऑन क्लासरूम रिसोर्सेज. एंड उनके ऐसे कहना कि अब इनफ इज इनफ, नाउ इट इज हाई टाइम कि इसकी तरफ हम ध्यान दें एंड इन इशूज को, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. सो एजुकेटर्स येस्टरडे टॉक्ड अबाउट द टर्न ओवर दे सी विद इन द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम अलॉन्ग विद डिक्लाइंस इन एनरोलमेंट जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. एंड दे ऑल्सो कंप्लेन्ड अबाउट द राइजिंग कॉस्ट फॉर अंडर फंडेड क्लासरूम्स. सो मेनी टीचर्स मार्च्ड इन द इवेंट organized by the North Carolina Association of Educators under the tagline Kids Over Corporations, and that is how it should be. So kal teachers begin lining up at Halifax Mall in downtown Raleigh at 10:30 a.m. Parents and grandparents also took the stage to address ek enthusiastic crowd in support of educators. Parents ka bhi kehna tha ki jab tak hum hamare educators ko support nahi karenge wo hamare bachchon ko dhang se support nahi kar payenge, and that is why it is very important. And the gathering was expected to last well into the afternoon. And it was all about making sure कि ये जो सारे issues है ये लोगों के सामने आए, हमारी authorities, lawmakers के सामने आए, ताकि वो उनको properly अच्छे से address कर सके and उसके ऊपर solution निकाल सके. So yeah, and obviously इन सारी चीज़ों में students also had concerns about their education. ऐसा नहीं है कि सिर्फ teachers and parents को ही पड़ी थी, students were also concerned कि भैया हम सीख रहे हैं, हमारे education का क्या, हमारे future का क्या. So अगर आप बच्चे कह रहे हैं तो मतलब सुनना तो चाहिए, teachers की सुननी चाहिए थे पहले वैसे देखा जाए तो, पर अगर वो नहीं सुन रहे तो बच्चे भी अगर आपको आके कह रहे हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या, हमारे एजुकेशन का क्या, तो इट इज़ हाई टाइम दैट लॉ मेकर्स टेक एक्शन. सो कल की रैली सक्सेसफुल रही ऐसा हम तभी समझेंगे जब एक्चुअली लॉ मेकर्स इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे. होपिंग फॉर द बेस्ट. सुनते रहिए नायरा रैली ड्रम, हूं आयुषी आपके साथ.

good is going to raise eyebrows across the global athletics community. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल मैं हूं आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. So what happened is Athletics Federation of India has entered into a cooperation agreement with Russian athletics, जिसके चलते it is going to be allowing Russian athletes to compete in India's domestic meets. Now, this development comes despite the ongoing restrictions imposed by World Athletics following Russia's invasion of Ukraine in 2022. And it basically continues to bar sare Russian athletes from major international competitions. Wo kahin pe bhi nahi compete kar sakte hain. Now, this agreement, which was finalized during a recent visit by Russian delegation to India, basically lays out a framework for expanded sporting ties, including participation in national competitions, joint training camps and coaching exchanges. अब AFI ने ऑफिशियली डिटेल्स नहीं बताया कि एग्जैक्टली व्हाट द अरेंजमेंट इज बट दीज आर सर्टन थिंग्स जो हमें पता चले हैं एंड एट द सेम टाइम रशियन एथलेटिक्स कंफर्म दैट उनके एथलीट्स कुड सून ट्रैवल टू इंडिया टू कम्पीट एंड ऑल्सो चेज क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ग्लोबल इवेंट्स. सो दिस इज अ लिटिल बिट शेडी, इट्स लुकिंग लाइक अ लिटिल बिट शेडी कि अगर आपको ग्लोबल स्टेज पे अलाउ नहीं कर रहे तो आप इंडिया जाके वहां पे कम्पीट करेंगे एंड उनके चैनल्स थ्रू यू माइट वॉन्ट टू कम ऑन द ग्लोबल स्टेज अगेन. इट इज गोइंग टू रेज आईब्राउज फॉर श्योर. अब देखना है कि बाकी जो लोग हैं इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, स्पेशली वर्ल्ड एथलेटिक्स. वी हैव टू सी कि इसके ऊपर कुछ होता है या नहीं, बट या दिस इज वॉट वी हैव अंडरस्टूड. सुनते रहिए नायरा राली ड्रम, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। अगर आप सोच रहे हैं कि पीस टॉक्स का क्या हुआ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है दैट यूएस मे बी बेटर ऑफ इफ नो डील इज रीच्ड विद ईरान आफ्टर अर्लियर स्टेटिंग दैट ही वाज अनसेटिस्फाइड विद तेहरान्स लेटेस्ट पीस प्रपोजल। अब जो वॉर अप्रूवल की डेडलाइन है, इट इज ऑलरेडी रीच द 60-day मार्क येस्टरडे, मीनिंग दैट नाउ इट रिक्वायर्स कॉन्ग्रेशनल ऑथराइजेशन टू कंटिन्यू अंडर द वॉर पावर्स रेजोल्यूशन। नाउ White House is kind of arguing ki nahi, the conflict is over because of the ceasefire, and Trump described the resolution as totally unconstitutional. So exactly kya situation hai mai nahi pata, and aaj matlab Saturday hai, weekend hai, to jab tak shayad se Monday nahi aata hame shayad se iske bare mein kuch nahi pata chalega. On the other hand, ye bhi hame pata chala hai ki Germany ne bataya hai that Pentagon's move to withdraw roughly 5000 US troops over the next year was anticipated, because German chancellor jo hai unhone kaha that US was being humiliated by Iran, and fir kind of ego hurt ho gaya to unhone troops wapas bula liye. So this is where we are as of aaj subah. These are the latest khabre and updates jo hame pata chale hai ki where exactly the peace talks are going. They are as of now going nowhere, and abhi tak there's literally no resolution in sight, to hame nahi pata aage kya hone wala hai. Yeah, but yeah, gas prices badh rahe hain, oil prices badh rahe hain, wo to apna kaam kar raha hai. Sunte rahiye Narrali Drum, Mahayushab ke saath.

0: book your tickets now.
1: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी पक्का लोकल.
2: नमस्ते जी, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. लिटरली एक जगह हम थोड़े से टेंस्ड है कि भैया गैस प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, नेशनल एवरेज भी बढ़ गया है, हमारी स्टेट का रैली का एवरेज भी बढ़ गया है, तो कैसे होगा. एंड जो ऑयल क्राइसिस हम देख रहे हैं उसमें हमें नहीं पता कि कब ऑयल प्राइसेस कम होंगे, कब गैस प्राइसेस कम होंगे. ऐसे में चाइना अलग ही चल रहा है, मतलब दे हैव दिस ह्यूज मार्केट फॉर ईवीज नाउ. दे आर लाइक व्हाट ऑयल क्राइसिस, वी आर अनअफेक्टेड बाय द ऑयल क्राइसिस बेसिकली. सो देयर वाज एक बड़ा सा डिस्प्ले इन बीजिंग दिस वीक, इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटो शो. एंड वहाँ पे उन्होंने मेजरली सारी जो ईवीज है जो वहाँ पे फिलहाल मैन्युफैक्चर हो रही है या फिर होने वाली है उसके बारे में प्रेजेंटेशंस दिए. सो चाइनीज कार मेकर्स आर क्रैंकिंग आउट देयर ऑफरिंग्स एट अ लार्ज स्केल एंड ऑल्सो कंपैरेटिवली लो प्राइस. एंड देयर इज ऑल्सो अनदर मेजर सेल कि ऑयल एंड गैस प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द ईरान वॉर. तो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दीज ईवीज, दीज कार्स आर लाइक जस्ट यू नो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड. So now these cars, these companies are, you know, just take existential threat to some automakers and also politicians around the world. And it is interesting to see how, you know, it is going to be interesting to see how this plays out. Ki, you know, China ke EVs are all ready to dominate the 21st century. They are like, ki hume oil ki zarurat nahi hai. Oil prices kitne bhi badh jaye, we are all ready. We are all sorted. Hamari koi dependency nahi, kuch nahi hai. Yeah, अब देखना है कि पॉलिटिशियंस स्पेशली इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं. सुनते रहिए नारा राली ड्रम, मैं हूं आयुषी आपके साथ.

0: आज और कल ये दो दिन हैं आपके पास. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पकड़ेसी पकलोकल. मैं हूँ आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. आई नो दिस मार्केट इन जनरल हैज बिन बहुत ही ज्यादा रोलर कोस्टरी. मतलब एक दिन कुछ बहुत ही अच्छा पता चल जाता है, एक दिन थोड़ा सा ऐसे होते कह रहे प्राइसेस कितने बढ़ गए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. पर आज और कल आपके पास एक्चुअली एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे रह के कुछ बहुत ही बढ़िया रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो टुडे एंड टुमारो वी हैव गृह प्रवेश प्रेजेंट्स इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. इट इज हैपनिंग फ्रॉम 10 AM to 8 PM at 4 points in Raleigh Durham Airport. So yeah, it is going to be the opportunity ki aap Raleigh mein baith ke Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi NCR, Goa, Hyderabad, Indore, Kochi, Kolkata, Mangalore, Mumbai, Mysore, Nagpur, Pune, Vishakhapatnam, Vijayawada, ऐसी सारी इंडियन सिटीज की प्रॉपर्टीज एंड रियल इस्टेट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम आपको यूएसए के भी कुछ रियल इस्टेट एंड प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलेगा. सो इट इज जस्ट कि आपको यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे इन द सेंस हमारे राली में बैठना है एंड यहाँ से आप पूरी दुनिया भर की प्रॉपर्टीज जो है वो देख के आपका इन्वेस्टमेंट का डिसीजन अकॉर्डिंगली ले सकते हैं. बिकॉज येस इट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ यू नो रोलर कोस्टर मार्केट एज ऑफ नाउ, बट यहाँ पे जाके आपको सारी चीजों के रिलेटेड मदद मिल जाएगी. यू विल हैव अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं. सो येस जस्ट विजिट 4 points Raleigh Durham एयरपोर्ट में एंड आप उनके वेबसाइट पे जाके माई स्क्वेयर फीट के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन गो एंड अटेंड दिस इवेंट दैट इज टुडे एंड टुमारो फ्रॉम 10 AM टू 8 PM. सुनते रहिए नायर Raleigh Durham, मैं हूं आयुषी के साथ.
1: सुनते रहिए रुनहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
2: आज का प्लान क्या है, सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: सुर भी देसी है और स्टाइल भी. 101.9 FM 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

हेलो हेलो, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल। मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। आई रियली होप कि आपने कल के लिए टिकट्स निकाल के रखे हैं एंड आप कल जाके ये पर्टिकुलर इवेंट एंजॉय करने वाले हैं, इसके साथ बहुत फन करने वाले हैं, बिकॉज टुमारो वी हैव नन अदर देन शंकर एहसान लॉय परफॉर्मिंग लाइव इन रैली। दे आर ब्रिंगिंग देयर शो जिसका नाम है दिल चाहता है। इट इज हैपनिंग टुमारो एट रैली मेमोरियल ऑडिटोरियम, दैट इज मार्टिन मैरियटा सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। एंड कल ये जो सुंदर सा लाइव शो होगा, इट इज गोइंग टू बी दी थिंग टू एंजॉय हमारी रैली में। सो इफ यू स्टिल हैव नॉट बुक्ड योर टिकट्स, अभी भी थोड़ा बहुत समय है, ऐसे हो सकता है कि कुछ आखिरी के बचे कुछ टिकट्स आपको बाय चांस मिल जाए, तो जल्द से जल्द टिकट मास्टर पे जाइए, आपके टिकट्स जो है वो वहां से निकाल लीजिए एंड कल जाके दिल चाहता है विथ शंकर एहसान लॉय लाइव एंजॉय कीजिए हमारे रैली में। ऑल्सो वी आर प्राउडली अनाउंसिंग दैट वी आर देयर मीडिया पार्टनर, तो यहाँ पे उसके रिलेटेड और भी सारी जो जानकारी है आपको मिलती रहेंगी। बट येस, यू कैन टेक्स्ट देम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। उनका नंबर है 347-205-7276. इट इज हैपनिंग टुमारो गाइज, या डू नॉट मिस दिस चांस एट ऑल। बहुत ही बढ़िया बढ़िया हिट्स आपको इन्जॉय करने मिलेंगे। आई मीन शंकर एहसान लॉय है, उनके इतने बढ़िया गाने हैं, इट इज़ अ लंबी लिस्ट, मैं भी बैठ जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा, बट या यू आर गोना बी एंजॉयिंग दी बॉलीवुड सॉन्ग्स, सो डोंट मिस दिस एट ऑल। सुनते रहिए नायरा राली ड्रम, मैं हूं आयुषी आपके साथ।

मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका डीसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी और आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. सैटरडे के हिसाब से आज कुछ फन ऑकेजन है. यस, अगर आपको लग रहा था कि मैं बोलूंगी नहीं है तो नहीं है. टुडे वी हैव फ्री कॉमिक बुक डे, सो यू कैन एक्चुअली यू नो जस्ट रीविजिट आपका फेवरेट कॉमिक बुक. इन द सेंस कि अगर आपने खरीद के रखा होगा जस्ट गो रीड इट, हैव फन विद इट. इफ नॉट तो यू कैन विजिट आपके पास का एक हदा कॉमिक बुक स्टोर एंड मे बी यू कैन ऑब्वियसली आस्क देम कि उनके यहाँ अच्छे कॉमिक बुक्स है या नहीं. ऑब्वियसली होंगे फॉर श्योर, एंड खरीदिए. सो इट इज नॉट अबाउट एक्चुअली गेटिंग अ फ्री कॉमिक बुक फ्रॉम द कॉमिक बुक स्टोर. इट इज अबाउट एक्चुअली गोइंग एंड सपोर्टिंग आपका लोकल कॉमिक बुक स्टोर ताकि वो यू नो रहे वहाँ पे एंड हम जाके जब भी हमारा मन चाहे कॉमिक बुक्स एंजॉय कर पाए. सो इट इज अबाउट दैट. आज इंटरनेशनल हैरी पॉटर डे है. नाउ वी ऑल हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट दिस, इवन द एक्टर्स हैव. मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बट या हमारी जो बचपन की यादें जुड़ी है, जो कुछ कोर मेमोरीज एसोसिएटेड है विद दिस बुक एंड द सीरीज स्पेशली द मूवीज, आज हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज नेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डे है. इवन इफ हम उनसे बहुत झगड़ते हैं बट उनके सिवा रह भी नहीं सकते, ये अजीब व गरीब नाता है. मतलब या सिबलिंग्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन जनरल ऐसे ही होते हैं कि बहुत झगड़ते हैं बट एट द सेम टाइम वी जस्ट केयर फॉर ईच अदर वेरी डीपली. सो आज हम इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज नेशनल होम ब्रू डे है एंड बियर पोंग डे है. आई वाज लाइक ओके सैटरडे के हिसाब से कूल कूल, बट आज नेशनल फिटनेस डे भी है. सो या डू व्हाट यू वांट विद दिस, बट ये आज के ओकेजन है. सुनते रहिए नायरा राली ड्रम, आयुषी आपके साथ.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: सुनते रहिए नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज तो बहुत ही बिजी दिन है गाइज, बहुत ही ज्यादा। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम, पक्का देसी पक्का लोकल। मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। अब आज एपेक पीक फेस्ट एंड स्मिथफील्ड हैम एंड यम फेस्टिवल जो है, वहां पे बारिश के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज दीज आर आउटडोर फेस्टिवल्स एंड वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। मतलब वहां पे एक्सपेक्टेड है कि सबसे ज्यादा शावर्स रहेंगे, तो वहां भी थोड़े से प्लान्स आपकी चौपट हो सकते हैं। बट अदर देन दैट वी हैव मीट इन द स्ट्रीट फेस्टिवल। It is a week first festival जहां पे 100 artisan booths रहेंगे, बहुत सारे handmade items है for sale, dozens of food trucks जो आप enjoy कर सकते हैं। Then we today also have rally geek and grub market, so you can go and enjoy that as well. Drum craft market, carry dog days, pickle town palooza, the station clayton grand opening, person street plaza block party, ये सारी चीजें आज ही हो रही है। अब drum craft market जो है वो already शुरू हो चुका है, it is from 9 AM to noon, तो अभी आपके पास शायद से और 2 घंटे हैं कि आप जाके वहां पे फ्री फेस्टिवल जो है एंजॉय करके आ सकते हैं। देन क्रेजी डॉग डेज इज अ पेट वेंडर विलेज, वहां पे फूड ट्रक्स, एजिलिटी कोर्सेस, ऐसा सब कुछ रहेगा। एंड पिकल टाउन पलूजा इज ऑल द सेलिब्रेशन ऑफ पिकल टाउन बियर, पिकल थीम्ड ईट्स, शॉपिंग, लाइव म्यूजिक एंड ऑल्सो गुड वाइब्स एट डीप रिवर ब्रूइंग। देन स्टेशन क्लेटन ग्रैंड ओपनिंग है, वहां पे यू कैन मीट द मेकर्स, द शेफ्स, द आर्टिस्ट्स। एंड पर्सन स्ट्रीट प्लाजा ब्लॉक पार्टी में तो सारी ब्लॉक पार्टी चीजें हो रही है। उसके साथ साथ टुडे वी हैव मार्बल्स फैमिली फील्ड डे, इट इज फ्रॉम 9 AM टू 1 PM, तो वो भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जाके आप एंजॉय करके आ सकते हैं। We also have Gwendol's Public Safety Day. We have free comic book day, जैसे मैंने कहा। So, Yellow Bird Comics in Fauquier Arena and also New World Toys in Gardner and Ultimate Comics in Drum are some of the comic book stores participating. मैंने कहा कि आपके जो पास वाला comic book store है, वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। These are the comic book stores participating. Then we today also have Moms and Motorcycles and Kathy Griffin performing along with Chelsea Handler performing at DPAC. All of these things are happening today. Itself, my goodness, it is going to be a very busy day. कल बहुत कम चीजें हैं, but ये सारी आज हो रही है। सुनते रहिए नारवाली ड्रम, मैं हूं आयुषी आपके साथ।

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

फाइंड दिस इज वेरी फैसिनेटिंग टू नो अबाउट, लाइक सुपर फैसिनेटिंग. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पक्का देसी पक्का लोकल महायुषी एंड आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. एज ह्यूमंस हमें आदत होती है कि हम लोगों को कॉपी करते हैं. बच्चे जो है अपने फ्रेंड्स को कॉपी करते हैं, बड़े जो है वो रैंडम इंटरनेट ट्रेंड्स को कॉपी करते हैं. बट वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ कॉपिंग थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल. And it apparently turns out that this sort of imitation is not unique to our species only. बहुत सारे wild animals भी एक दूसरे को mimic करते हैं, copy करते हैं. But अब हमें पता चला है that wild parrots learn to try new foods by copying their peers. ऐसा हमें पता चला है. So animals who live in urban environments often encounter नए नए अलग अलग resources जैसे कि street trees, exotic plants, invasive species and unfortunately garbage as well. तो how to navigate through this? ये जब देखा गया तो for animals in these ever-changing cityscapes उनका diet is very crucial. And अगर उनको जानना है कि हमें क्या खाना चाहिए and क्या नहीं, तो वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं. लाइक दे आर ऑफन वेरी ऑफ देर लाइक कि नहीं नहीं ये नई चीज़ है तो हमने नहीं ट्राई करनी चाहिए. दे आर वेरी वेरी ऑफ ट्राइंग अनफेमिलियर फूड बिकॉज उनको पता होता है दैट यू नो इट माइट बी पॉइजनस, इट माइट कैरी पैरासाइट्स एंड एवरीथिंग. बट वन टूल दे यूज इज दैट that is social learning which they do by observing or interacting with others or their items. तो वो लोगों को भी देख सकते हैं, अपने peers को भी देख सकते हैं. and अगर उनको दिख रहा है कि उनके peers एकदम अच्छे से ये चीज़ खा रहे हैं तो वो भी वो जाके खाएंगे. so this strategy has been seen not just among certain you know प्रकार के birds but among like wild jackdaws and wild rooks as well. and also lab studies on rats in Norway have shown that rats can also acquire food preferences by smelling the breath of clued up individuals. तो वो ये जो एक पूरा fascinating चीज है कि हम जैसे copy करते हैं वैसे animals भी करते हैं. It is super super interesting to know कि वो भी अपने दोस्त की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है कि अच्छा ये जो खा रहा है ये मुझे भी चाहिए and तभी वो खाता है. This is often what happens with me in like different restaurants. कि अरे उनके प्लेट में अच्छी चीज दिख रही है हम ये मंगा लेते हैं. That is exactly what that is. Yeah, they copy their friends. My goodness. सुन रही है नरवाली ड्रामा वायुषेप के साथ.

0: नमस्ते जी, वेलकम बैक। आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल। मैं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ। द राइजिंग कॉस्ट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर हैज नॉट डिटर्ड देसी फैमिलीज यू नो फ्रॉम बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी और ज्यादा। ऐसे में अब उनका ऐसे हो गया है कि अरे अब तो हमें और ज्यादा खरीद के रखना पड़ेगा, बिकॉज यू नेवर नो कि अब हमें आगे कब खरीदने का मौका मिले। एंड दिस इज लाइक दी इन्वेस्टमेंट जिसमें हम ऑब्वियसली हमारे पैसे जो है वो लगाते हैं। तो ऐसे में इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बाइंग सम ज्वेलरी, बट इफ यू आर लाइक अरे अभी हमारा इतना बजट नहीं है बट वी स्टिल वॉन्ट बाय रियली नाइस ज्वेलरी, तो यू कैन जस्ट विजिट नाइन जेम्स। दे हैव अ ब्यूटिफुल लग्जरी कलेक्शन एंड इट इज ऑफ 92.5 सिल्वर ज्वेलरी, 22K गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी उनके पास है, एंड दे ऑल्सो हैव प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स की एंड बीड्स की ज्वेलरी। सो यू कैन जस्ट यू नो गो एंड एक्सप्लोर दैट एज वेल इफ यू आर लुकिंग फॉर सम रियली नाइस कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अभी गोल्ड और यू नो सिल्वर के प्राइसेस देखते हुए हम एकदम बहुत ज्यादा तो नहीं खरीद सकते, पर हमें थोड़ा बहुत कुछ खरीदना है, तो दिस माइट बी रियली रियली परफेक्ट फॉर यू। बिकॉज जैसे मैंने कहा 22 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी एंड 92.5 सिल्वर ज्वेलरी आपको यहां पे खरीदने मिलने वाली है। सो डू नॉट फॉरगेट द नेम, दैट इज नाइन जेम्स। यू कैन विजिट देयर आउटलेट इन वेस्ट कैरी एंड आप उनको कॉल करके वहां पे अपॉइंटमेंट लेके विजिट कर सकते हैं। सुनते रहिए नायराली ड्रम, मैं हूं आयुषी के साथ।
1: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

हेलो हेलो, वेलकम बैक. आपने ट्यून इन किया है नायरा राली ड्रम पका देसी पका लोकल. मैं हूं आयुषी, आप सुन रहे हैं जरा मुस्कुराओ. अब कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, इट इज संडे. वी आर गोना बी मीटिंग ऑन मंडे डायरेक्टली. बट जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स टू एंजॉय टुमारो एज वेल. आज का जितना बिजी दिन है उतना नहीं है कल का बिजी दिन. बट कल द स्काईज आर गोना बी क्लियर, द स्काईज आर गोना बी सनी. इट इज एक्चुअली गोना बी रियली नाइस कि आप आउटडोर्स जाके एंजॉय करके आए. तो Tomorrow we have a free outdoor concert series in Wake Forest at E. Carroll Joyner Park, jiska naam hai Six Sundays in Spring. So you can go and enjoy that as well. Tomorrow we have Durham Craft Market Spring Fling. You can find the perfect gift for aapki mom and others. And tomorrow we also have Mother's Day Market. So the Maiton Inn in Cary is hosting this winter market from 3 to 6 p.m. Kal aap Jurassic Park in concert bhi jaake enjoy kar sakte hain. North Carolina Symphony is bringing this concert to you. And yeah, kal baki Sunday hai, aaram se aap idhar udhar ki cheeze kar sakte hai and just you know fun kar sakte hai. Baki hum milenge on Monday. Abhi main aapko aapke favorite Bollywood gaane and bahut sari idhar udhar ki baaton ke sath chhod ke ja rahi hu. Aap hamari app download karna na bhule, that is Radio Nara USA, which is available on both App Store and Play Store. Just download it and we are then just one click away. Sunte rahiye Nara Rally Drum on 99.9 FM HD 4, 11.9 FM 4090 AM. Bye bye, take care, stay safe and have a sundar sundar sundar weekend ahead. And see you on Monday. Bye.

morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Trying Loons and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. बट फिकिंग नॉट, आपके डे को रिलैक्सिंग बनाने के लिए मैं आपको ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार खबरें सुनाने वाली हूँ और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

ये धमाकेदार गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक। वेल माय फ्रेंड, ये बहुत जल्दी 15th एनुअल ईस्ट कोस्ट ट्रकर्स जंबोरी सेलिब्रेट होने वाला है। Kenley 95 Petro is looking forward to the 15th annual East Coast Trucker Jamboree that takes off I-95 exit 106 Hendrin at the Shine every May. The Jamboree boat and truck show for the big rigs as well as two different car show and the motorcycle show. The truck will be on display Thursday through the Saturday all day and the time of car show will be announced on Kenley 95 Petro Facebook page as the Jamboree Day draws near. Parking and admissions and well free event hai bhai sahab, but apne pocket full karke rakhiye kyunki bahut sari activities bhi yahan hone wali hai. Miss mat kariye, zarur enjoy kariye. Filhal ke hi jaiyega, nahi sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pakka desi pakka local.

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर इंडिया एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। फिल्म हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी कल्चरल फेस्ट होने वाला है। एक्सपीरियंस अ वर्ल्ड ऑफ कल्चर राइट इन द हार्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड एट कल्चर फेस्ट। दिस वाइब्रेंट सेलिब्रेशन ब्रिंग टुगेदर वेंडर कल्चर परफॉर्मेंस एथनिक कुजींस एंड फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज ऑफ ऑल अलोंग डाउनटाउन ऑक्सफोर्ड मेन स्ट्रीट। Stroll through the booth featuring handmade and culture-specific items for Mother's Day gift from jewelry and clothing to DIY flower bar and custom woodcraft. Food truck and vendor offer a diverse taste of the world flavors with the live music, dance and cultural demonstration. Keep the energy high throughout the day. मजेदार इवेंट होने वाला है भाई साहब, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: your tickets now.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: के बेरा कोनी तन्ने नेहा ककरू मैं।
1: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिस विले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद अब आपके शहर में। गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर 2.5 घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी।

0: होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: ये गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक। वेल, हमारे ट्राइंगल में बहुत जल्दी फुट हिल्स फोक आर्ट फेस्टिवल होने वाला है। द फुट हिल्स फोक आर्ट फेस्टिवल स्टैंड आउट फॉर इट्स ऑथेंटिक सेलिब्रेशन ऑफ कंटेम्पररी फोक आर्ट रूटेड इन द कैरोलिना फुट हिल्स, ऑफरिंग चांस टू मीट आर्टिस्ट, वॉच लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेक होम वन ऑफ अ काइंड ऑफ पीसेस यू वोंट फाइंड एनीवेयर एल्स। Thousands of visitors to celebrate the creativity of foothills featuring local and regional contemporary folk art and fine artists with the work available for purchase. मजेदार इवेंट होने वाला है भाई साहब, मिसमत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइए नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: कलंग

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सेंटर। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डून सेंट ऑफ। वेल अपना घर और अपने सपनों का घर होगा और भी आसान। राले में पहली बार आ रहा है गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो। सेकेंड एंड थर्ड में मॉर्निंग 10 से इवनिंग 8 बजे तक फोर पॉइंट्स राले डरम एयरपोर्ट मॉरिसविले नॉर्थ कैरोलिना में भारत के कई बड़े शहरों की प्रॉपर्टीज अब एक छत के नीचे मुंबई पुणे नागपुर हैदराबाद बेंगलुरु दिल्ली एनसीआर और कई अन्य शहरों से शानदार प्रोजेक्ट। अगर आप भारत में घर प्लॉट या निवेश का सही मौका ढूंढ रहे हैं तो यह एक्सपो आपके लिए है। यहाँ मिलेगी एक्सपर्ट गाइडेंस बेस्ट डील और सीधे बिल्डर से बात करने का मौका। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर की ओर पहला कदम बढ़ाइए गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो के साथ। अभी रजिस्टर करें और अपने भविष्य का सही फैसला लें। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देसी पक्का लो।

0: And dining along with the 80 plus vendor offering a handcrafted good jewelries, artisan craft food and beverages. Local craft breweries including Oscar Blue Brewery and Braveyard Brewing Company. बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है भाई साहब, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रुनहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruha Pravesh India Property Expo in Raleigh. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR, all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 2nd and 3rd May, Four Points Raleigh Durham Airport. 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
3: Namaskar, this is Shankar Mahadevan.
4: Hi, this is Esa.
5: Hi, I'm Lloyd.
3: We're coming to Raleigh on Sunday, May 3rd for a show organized by Arvind and Neha Mahajan.
4: Looking forward to seeing all our fans after a long time in Raleigh.

आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूंस एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक और डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। नाइन जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। नाइन जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल डूम्स एंड टॉक। कल हमारे ट्राइंगल में बहुत जल्दी अनकॉर्क अ रेल एंड वाइन एक्सपीरियंस सेलिब्रेट होने वाला है। पैसेंजर विल ओपन अ फुल सर्विस ऑल डे एडल्ट फर्स्ट क्लास राइड इन फर्स्ट क्लास कार with the private attendant and plush well appointed dining seating. A narrator will accompany a ride to present each Portuguese and share knowledge and history of wine selected. Passengers on this specially car will enjoy an exclusive sampling of cheeses and surf and turf meal prepared fresh. तो ऐसा इवेंट हमारे ट्रैंगन में बार बार नहीं होता भाई साहब, इसलिए मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रुनहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: Namaskar, this is Shankar Mahadevan.
3: Hi, this is SR.
4: Hi, I'm Lloyd.
2: We're coming to Raleigh on Sunday, May 3rd for a show organized by Arvind and Neha Mahajan.
3: Looking forward to seeing all our fans after a long time in Raleigh.

0: your tickets now.
1: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruha Pravesh India Property Expo in Raleigh. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR, all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 2nd and 3rd May, Four Points Raleigh Durham Airport, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
2: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.
3: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM, Radio Naira.
4: जी हाँ दोस्तों, सो यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा एंड वी आर ऑन द शो दिल से देसी विद वैन. एक घंटा चला गया यार. वी बीन टॉकिंग थ्रू अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इश्यूज एंड वी टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो बच्चों की रूट्स वर्सेस आइडेंटिटी, राइट? लाइक दोनों को पेरेंट्स आर पुशिंग देम इन द बोथ डायरेक्शन. वेयर डू यू वांट टू गो? यू कैन कॉल मी एट 919-999-8595. And I was talking about how do we keep the balance, right? So we were talking about language connection, academic pressure. Already itna kuch bhaji pala paka diya hai unke dimag mein. Now, like, there comes the real one, right? We were talking about the identity crisis. What does the child feel, right? Ke unke dimag mein unko kaise feel hota hoga? Because we always feel like, yeah, you know what, like, aisa hai, you know, he's going to do this and that. But at least every child has something going on in their brain. Ke bhai, you know, how do they want to perceive? And unko bahar jab ghar se jaate hain, to how do they get perceived? Right, so it's about the identity, right? Unki bhi school mein teacher ya classmate unko bol rahe you are different. Ghar mein aake parents unko bol rahe you are tum bahut zyada American ho rahe ho. Bachcha kare to karega iske andar, right? Like, where do they go with this? Like, the second generation ke liye identity navigate karna first generation se kahin zyada mushkil hai. Like, it's not that easy because they do not know anything about India or country or wherever you're coming from, right? Ke they don't know wahan pe kya hota tha, kaisa hota tha. You're just talking about, you know, showing them the imaginary world. So, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन लाइक इंडिया से सॉलिडली और कोई भी अपनी मदर कंट्री से लाइक सॉलिडली कनेक्टेड होकर आई है, उनके लिए यू नो थोड़ा इजी है. बट इन बच्चों के लिए दोनों वर्ल्ड में किसी से भी यू नो कंप्लीट बिलोंगिंग नहीं होती. बिकॉज यस, व्हेन दे गो टू स्कूल एंड दे ऑल ऑफ दैट दे आर कनेक्टेड, उनको वही सब पढ़ाया जाता है और सब कुछ है. बट देन व्हेन दे कम होम दे आर गेटिंग अ सेकंड, यू नो, एक मूवी में दो सीन चल रहे होते हैं उनकी लाइफ में. तो स्कूल में कुछ और चल रहा है और घर पे कुछ और चल रहा है, राइट? सो ये सैड नहीं है, इट्स एन एवोल्यूशन, राइट? एंड यू नो आवर जॉब इज टू गाइड देम इन द एवोल्यूशन, राइट? कि भाई हाउ कैन वी हेल्प यू इन कीपिंग गाइडेंस फॉर योर रूट्स, वेयर वी केम फ्रॉम, क्या था स्टोरी, बैक स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट. लाइक, तो जज, यू डोंट हैव टू जज द चाइल्ड, राइट? के इन चीज़ों के अंदर के दे डोंट नो अबाउट लाइक हनुमान चालीसा क्या है एंड ऑल दैट. इट टेक्स टाइम फॉर एनीबडी टू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड you know, it's something you have to guide and not force. Like, you know, for someone who lived half of their life in India and half of here, it's very easy for them to like wear a sari and, you know, go to the wedding and then explain all the history about the sari and then show up the next day in a suit in the office and then talk about like dominating. Like, you can dominate the whole presentation there and you're completely different because you adopted two cultures, you saw both of them. But in the next second generation, clearly, dono possible nahi hai. It's not that easy, right? So what can we do, right? So how if they, you know, keep a family dinner, like no phones, you know, sab ke liye, and if you have extended family, uncles, aunts, whatnot, keep them close to them. Watch or tell them some stories. Aapke bachpan ki India mein jo bhi hai, you know, your time you spent, what kind of life you had there. show them the struggles you have had in your first generation happened. If you're a third generation, you can talk about like, okay, this is what happened in the past two generations, right? Because I've seen families who are third generation here now. So, you know, a story, like ask the child what is happening in the school. Knowing what is happening in the school is also very important. Ye ek emotional bridge banta hai, right? Slowly, quietly, permanently. Like so kids don't want like a perfect cultural history nahi chahiye unko. They need consistent connection, like where do they belong and you know, what is the background, what is the history, right? Slowly, right? You can't enforce any of these things to them. Otherwise, though, you know, enforcement is just a recipe of rejection for the new generation now. So, you know, that is important because they are going through with this cycle. They feel like, you know, मुझे रोटी और चावल खाना ही पड़ेगा इवन इफ आई वॉन्ट टू ईट बर्गर एंड बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज दैट्स द कंट्री दे ग्रू अप इन नाउ दे बिलोंग टू यू एस दे बिलोंग हियर दे हैव देयर आइडेंटिटी एज वेल जस्ट लाइक यू हैड योर ओन यू वर ऑल्सो आपके पास चॉइस नहीं थी जब इंडिया में बॉर्न हुए थे राइट सो the same thing you got to give them the flexibility in this and then assess like how things are going but the balance is important here as well because I've also seen a lot of families where kids don't know anything about it because both the parents are busy at working kya kare job hai and all of that but then in that touch they have lost everything like so the key is like early age is very important and it's very easy for them to adopt to the culture once they are 14 15 16 forget it it'll be very hard for you to you know put them back into any track because at that point they are in a completely different world their brain and everything is just going to the next direction so again identity crisis happens to everyone जब आप भी पहले आते हैं तो यू फील लाइक यू आर मोर इंडियन एंड देन आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 15-20 ईयर्स एंड दे यू गेट योर अमेरिकन पासपोर्ट यू शिफ्ट गियर्स एंड मेजोरिटी द पीपल डू दैट बिकॉज नाउ दे हैव डिस्कवर्ड देमसेल्फ टू समथिंग एल्स बिकॉज अभी उनका घर रहना खाना पीना सब कुछ वही हो गया है बट अगेन यू वर फर्स्ट जनरेशन दिस इज द सेकेंड जनरेशन सो देयर इज अ गैप एंड डिस्टेंस बिटवीन द बोथ टेक देम टू इंडिया यू नो टेक देम टू ट्रिप्स आई एम गिल्टी ऑफ दैट इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू गो but this year I'm going to definitely give it a shot to go to India and you know take the kids and have fun there so yeah take them for a travel show them what is happening history all of that is very important because seeing is believing if you don't show them then it's very hard for them to comprehend any of these things so milte hain we'll keep talking about this topic a lot I felt like you know it's very important because I've seen this over and over इसके बीच में कोई सब कई जगह पे बैलेंस ही नहीं है समटाइम्स किड्स आर बीइंग थ्रोन इनटू एंड पुश्ड इनटू यू हैव टू डू ऑल ऑफ दिस वर्सेस द चाइल्ड डजंट वांट टू डू इट और द चाइल्ड डज नॉट इवन द पेरेंट इज नॉट इवन ट्राइंग टू डू सो देयर इज नो इट्स अ टग ऑफ वॉर सो हाउ आई सी इट बोथ साइड्स आर एक्सट्रीम एंड्स एंड हैविंग अ मीडियम बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो गाने सुनिए एंड देन आई विल बी बैक एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन। आज बज रहे हैं दलजीत, गुरु रंधावा, ऑल दी हिट सॉन्ग। सो आई एम एंजॉयिंग द म्यूजिक, आई होप यू आर एंजॉयिंग इट टू। इफ यू हैव एनी विश लिस्ट फॉर योर सॉन्ग्स, यू नो, फील फ्री टू डीएम मी। यू नो, नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई टू यू नो एडजस्ट द प्लेलिस्ट एज वेल, बिकॉज यही दो घंटे मुझे मिलते हैं गाने सुनने के, तो मजा आता है। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो वी लिसन टू द सॉन्ग्स ऑल द टाइम इन द कार। Feel free to call me 919-999-8595. You are on the show Dil Se Desi with Van. So aaj hum baat kar rahe hain, right? Like for the generations, like the first generation, second generation gaps, pressure, roots, American dream, you know, dono ka balance kaise rakhein, how do you want to make sure ke, like, you know, the kids are also attached to the right culture. Itna kuch wealth hai hamare paas, you know, cultural side pe. How do they know about this, ke itni sab cheeze chal rahi hain, how does these traditions, we can keep them alive, and you know, isko kaise balance kare, right? So ek bacche ke dil mein, dimag mein kya chalte rehta hai all the time, and kaise wo society se mingle karte hain, sab cheeze थोड़ा बहुत शोशेबाजी, थोड़ा थोड़ा पीयर प्रेशर एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, लाइक हाउ डू यू बैलेंस ऑल ऑफ दैट। सो यू नो वन ऑफ द कल्प्रिट इज लाइक यू नो नया दुश्मन कहते हैं, राइट, इसको सोशल मीडिया एंड द स्क्रीन टाइम, राइट। अगेन मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता इसके बारे में, बिकॉज आई डू हैव दिस थिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू कट ऑफ एज वेल। बट अगेन किड्स आर सो यूज्ड टू दिस एटमॉस्फेयर कि आप चाह के भी ना बंद नहीं कर सकते इसे। यू कैन नॉट स्टॉप और एनफोर्स, और आप कोशिश कर सकते हैं, but you know at some point when they get a freedom they're going to get on it, right? So बात करते हैं लाइक यू नो नए चैलेंज की, लाइक जो पिछली जनरेशन के पेरेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ी थी, बिकॉज कुछ होता था तो वी यूज टू गो आउट प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, व्हाट नॉट। मगर आजकल किड्स आर ऑन फोन एंड वीडियो गेम्स, एक्सबॉक्स, कितना कुछ है करने के लिए, राइट, इंस्टाग्राम, व्हाट नॉट, एक लाइफ बन गई है सोशल मीडिया में। एक बंदे की एक इमेज है, एक कहते हैं ना कि एक वो बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर हर बंदा बैठा हुआ है अपनी जगह में, राइट। तो एक सर्वे लाइक इन आवर्स इज रीडिंग इन द पेरेंट्स ने कहा कि लेकिन सोशल मीडिया उनके टीम्स के लिए सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ इशू है, एक हेडेक है, राइट, एंड स्पेशली व्हेन द किड्स गो इन द टीनेज, राइट। एक पेरेंट्स ने लाइक वाज सेइंग एग्जैक्टली लाइक द दे लिव इन अ फेक वर्ल्ड, राइट, जहाँ पे they limit them as humans and distance them from the family because of this, okay? They feel like, oh, my parents are too desi, if I take them outside, but social media mein log kya kahenge and all that. Ek peer pressure unke dimag mein chalta hai, ye cheezon ka, right? So, studies also say like, you know, ke char mein se, you know, teenagers mein se, char se jyada, you know, if a child is on a phone for like 4 to 5 hours a day, it's on a screen time, they are prone to have more anxiety, depression. You can listen to hundreds of podcasts, right? Like, you know, there's dopamine and all of these things, the reel scroll and all of that happens. Kaise ek bande ki life, ek puri, har bande ki jindagi mein ek na, एक रील की फिल्म चल रही है, बिकॉज यूर स्टक इन दैट सेम रील्स। इफ यू वॉच समथिंग एंटी सम पार्टी पॉलिटिकल, उसी की रील्स आनी शुरू हो जाएंगी। इफ यू वॉच समथिंग अबाउट लाइक यू नो अपेरल्स, तो उसी की रील्स आनी शुरू हो जाएंगी, और आप उसके एक चक्कर में फंस जाओगे जब तक कि यू नो इधर यू डोंट डिलीट दैट अकाउंट एंड क्रिएट अ न्यू वन। आप उसके अंदर इतने डीप जाते रहोगे, बिकॉज ये सब एप्लीकेशन इतनी डीप एल्गोरिथम्स पे चलती हैं कि you know it's very hard to understand. I was reading this, you know, TikTok ka itna jabardast algorithm unhone design kiya hai that they know everything and they can predict everything what is going on in your brain, even tak ki I think there was one thing main pad raha tha ke they can even predict the crush you have on somebody. तो वो कहाँ कहीं से उठा के वो उसके आपकी स्क्रीन के सामने वो बंदे की वो रील्स आ जाएंगी, सब आ जाएगा, देन ऑल दीज थिंग्स। सो इमेजिन वॉट हैपन्स इन द किड्स, लाइक यू नो कहाँ कहाँ से उनके कितने दोस्त होते, क्या क्या चलते रहते दिमाग में, ऑल दीज थिंग्स इज गोना कम कीप कमिंग, राइट। सो लगभग एक में से चार बच्चा जो है वो एनजाइटी और किड्स एंजाइटी या डिप्रेशन का ऑलरेडी शिकार है इसके चक्कर में, कि लाइक दे वॉन्ट बी इन दैट वर्ल्ड कि जहाँ पे वो बनना लाइक शॉपिंग वाले हैं और वो हैं लाइक कार्स हैं, सो दे आर जस्ट यू नो दे ट्राइंग टू गेट इनटू दैट वर्ल्ड, कि लाइक यू नो आई ऑल्सो वॉन्ट दैट। उसके चक्कर में दे गेट इनटू द रॉन्ग कंपनी, दे डू समथिंग, पीयर प्रेशर कि मैं भी कैसे करूँ वो सब कुछ, एक फाइट एक वो चलता रहता है, राइट। तो यू नो एक डबल
नॉर्मल प्रेशर है, लाइक एक और ये एक एक फैक्टर है, स्कूल की परफेक्शनलिज्म, सोशल मीडिया में परफेक्शन, दोनों एक साथ होना चाहिए उनके दिमाग. तो हाउ डू यू बैलेंस दैट आउट? रिसर्च इज सेइंग लाइक यू नो कि बहुत से टीनेजर अपनी सेल्फ वर्थ के लिए यू नो सेल्फ वर्थ टाई कर लेते हैं इसके साथ में, लाइक यू नो हाउ डज माई सोशल मीडिया प्रोफाइल लुक्स लाइक, दैट्स वर्ड आई हैव टू पुट माई ब्रांडिंग एज, लाइक कितने कॉमेंट्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स हैं मेरे, और अगर एक पोस्ट में कुछ एंगेजमेंट और फॉलो एंड और ये सब चीज़ें ना आए तो दे आर जस्ट इमीडिएटली यू नो गेटिंग एंगजाइटी, रिजेक्शन के ओ किसी ने कुछ लाइक क्यों नहीं किया, कुछ शेयर क्यों नहीं किया एंड ऑल दीज थिंग्स राइट. तो I've seen that in adults here too. Like, sabko, they love to flaunt the life on the social media, which is okay, you know, fine, right? But at the end of the day, anything you're putting out there, you don't control that information anymore. So, I've worked in like a lot of federal space and other places. So, wahan pe to ye bahut hi strict hai, right? Security and all these factors, and then they get trapped into some of these things. So, social media is very important. It's a beautiful tool, but if it use the right way, it's better. Be careful in commenting something, some post getting changed, because you know once you hit that send button, it's out of your control. You know, people get viral because of all of these things, because you know I love to watch those Karen and Kevin videos, like you know a community make hota hai koi na koi namuna, you know they are you know very worried about ke wo ghaas itni upar kyun ho gayi, let me make a video and call the cops and all that. It's like you know they're making you know fun of themselves on social media. So it has good and bad both. It helps out to spread the right information, but it also can destroy and demolish your mindset and your brain, aapki sochne ki taakat, your you know depression aur ye sab cheezon mein you can go easily into this. I've seen like bahut pehle ki baat hai, I came to know ke they were worried about like you know gaining weight. To kya karte the ke they used to go eat food and they would go to the restroom and they would like you know poke a finger on the neck and they will puke out the food just to trigger the body ke ha khana gaya hai pet mein, just to not gain the weight. I was shocked when I saw that. Ki ye kya nawa drama hai, right? Ki like you know, why are they going to the bathroom and they're like puking the food out because they just don't want to gain weight, because the brain triggers ki haan khana kha liya, pet mein gaya, ab puke kar lo and then you'll be fine. So itna bhi kuch lafde chalte rehte hai. I've seen so much, right? But again, you know, you can't stop it. You just have to balance it out. Use restrictions where you can, but also teach them the importance and the good and bad about this. Ke kya post karna hai, kya nahi karna hai. Your life is not just about social media, whether people likes and you know comment and whatnot. More you get into it, it's going to be very hard for you to get out of it, because you know I've been through this. I know how it works. That's why you know you won't see much on my personal profile or anything, because you know I want to keep that boundary for myself, right? But you know, keep checks and balances. You know, kids can get trapped into this. It's like a recipe of disaster. So you know, koi phone, you know, cut them off. You know, 30 minute ka connection kar do. Like you know, don't let the kids go through with you know with the phone screen time all the time. Lock the phone if you can, and then keep a balance where they also have an opportunity, right? Ekdam hi cut off karne se kuch nahi milega. I've seen that like over and over, like jahan pe jo states mein you know alcohol ban hai wahi pe sabse zyada bikti hai. So that formula will never work out for you, but you know have fun and thode thode gaane wane suniye, like you know bahut sare lectures ho gaye, you know. So you know I think ab to puri playlist hi jordar hai, and then I'll be back with more topics.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन. वी आर ऑलमोस्ट यू नो 1.5 आवर इन द शो. फील फ्री टू कॉल मी एट 919-999-8595. हम गाने सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक यू नो द किड्स आइडेंटिटी, द सेकंड जनरेशन हु इज ग्रोइंग अप हियर, द फर्स्ट वन हु केम बैक, एंड यू नो हाउ डू यू कीप यू नो द बैलेंस बिटवीन द टू, दोनों के बीच में कैसे एक बैलेंस बनाए, राइट. सो वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ बिगर थिंग्स, राइट, के सोशल मीडिया प्रेजेंस, प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर, आइडेंटिटी क्राइसिस. नाउ द थर्ड वन इज लाइक यू नो एक पेरेंट्स का सपना, लाइक एक इमोशनल जो गोली हर बच्चे को मिलती है. यू नो वी आर नोन फॉर इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर फैक्ट्री, राइट, के दैट्स हाउ वी बीन लेबल, के या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, और ये बनना ही है, नहीं बना तो फिर तेरी जिंदगी खत्म है, राइट, टू फेलियर है, राइट. तो दिस इज लाइक समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट, एंड यू नो टाइम हैज चेंज. And, you know, we all are kind of guilty in this being a parent. And, you know, if you are a parent, you, I mean, we all go through with this, right? Ke, Indian, you know, parents ka ek default career menu hota hai, right? Jaise khane ko jao to paneer tikka ya chicken tikka ya ye ya wo, wo default menu hai, wo aana hi aana hai, right, table pe. To, you know, doctor, engineer ya kuch, you know, dentist ya something, and then, you know, थर्ड ऑप्शन अगर बच्चा बोले ये क्या चूज कर रहा है यार, फंस जाएगा, एंड ऑल ऑफ दिस, राइट. सो वी जस्ट डिसकरेज एनीथिंग एल्स बियॉन्ड व्हाट द चाइल्ड वांट्स टू डू. सो राइट, यू नो हम ये क्यों करते हैं, राइट, क्योंकि वी जनरली लव अवर किड्स, वी वांट टू मेक श्योर दैट दे आर सक्सेसफुल, दे डोंट गो थ्रू द हार्डशिप व्हाट वी हैव गॉन थ्रू, ऑल ऑफ दैट इज गुड, लाइक से दिस इज ऑल जेन्युइन लव फॉर द चाइल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू विद दिस पाथ, वी गॉट सक्सेस फ्रॉम दैट राउट, सो वी वांट टू जस्ट यू नो इंप्लीमेंट दैट सेम पाथ टू द चाइल्ड. बट एज आई सेड, यू नो इन द पास्ट आई नो दिस, बंच ऑफ माई फ्रेंड्स सब ने आके नर्सिंग ले लिया. Now, जब जाके एज ए नर्स काम करना पड़ा, दे एब्सोल्युटली हेटेड इट, एंड दे लिटरली स्पेंड 4 years इन कॉलेज एंड ऑल ऑफ दैट, दे जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग, नाउ दे आर डूइंग समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज दैट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी, यू नो, बिकॉज देयर पेरेंट्स वर इन द मेडिकल फील्ड, दे वांटेड टू पुश टुवर्ड्स दैट, एंड इट डजंट वर्क आउट. सो लेकिन यू नो आज के, लाइक इफ यू लुक एट इट, राइट, द इंडियन ओरिजिन सीईओस, देयर आर 16 ऑफ देम इन फॉर्च्यून 500 कंपनीज. अगर आप 55% यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप जो किए यूएस के अंदर, लाइक दैट इज लाइक ऑल फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स, राइट, यही लोग बने हैं. पर इस इन लोगों का प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो ये सब कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है, लाइक दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, सम ऑफ देम आर डिजाइनर्स, राइटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, समथिंग एल्स, यू नो. तो यू कैन जस्ट लेबल के भाई यही लोग करना है, राइट. And like next time, you know, if the child is asking, you know, I want to learn music, your child says, or I have interest in like sports, or, you know, psychology padhna hai and all these, like, yes, ek genuine dar hota hai ki yaar koi itna hi bura major na le le ki jisme koi life hi banna dismiss ho jaye, mushkil ho jaye. Don't dismiss the thought. Understand their, you know, value proposition and understand where they're coming from. Yehi kyun dimag mein chal raha hai. If it is just for the fantasy sake, jaise mere dimag mein tha ki, oh, you know, hotel management karenge, or, you know, क्रूज में काम करेंगे, राइट,

0: बट क्रूज में काम थोड़ी काम तो किचन में होना है राइट सो दैट्स लाइक लॉन्ग टाइम व्हेन आई वाज 16 15 राइट इट वाज लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन योर माइंड यू आर पजल्ड व्हाट यू वांट टू डू बट देन बट इफ दे हैव अ जेन्युइन जेन्युइन यू नो इंटरेस्ट इन समथिंग डोंट किल दैट बिकॉज़ यू नेवर नो राइट यू नो आज नहीं तो युवराज सिंह नहीं होता और सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं होता बिकॉज यू नो दे किल देयर ड्रीम्स इट डजंट हैपन लाइक दैट सो Yes, securing is important, but it can't be labeled कि भाई एक जाके आईटी की डिग्री कर लो कंप्यूटर साइंस कर लो और बस कोडिंग करो लाइफ में एंड देन यू आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग द होल डायनामिक्स ऑफ अ चाइल्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग आई विल टेल यू लाइक यू नो माय सन लाइक यू नो 5-6 इयर्स ओल्ड एंड ही इज लाइक बिग इनटू कार्स लाइक उसको मुझे भी पता नहीं जो उसको पता है लाइक ऑनेस्टली द अदर डे आई वाज वी वेंट आउट एंड वी वर डूइंग समथिंग यू नो लुक एट दैट जी वैगन इज एन ऑफ रोड ट्रैक इज लाइक व्हाट 6 इयर्स नॉट इवन 6 यस 6 इयर्स मुझे नहीं पता था भाई जी वैगन क्या है व्हेन आई वाज दैट एज बट दे नो सो मच अबाउट इट ही हैज अ डेस्परेट इंटरेस्ट एंड ही नोज हाउ टू टर्न ऑन द कार एंड ऑल ऑफ दैट लाइक इतना इंटरेस्ट है एंड लाइक यू नो आई वुड प्रेफर हिम You know, learn building the cars, and I would love for him to be an entrepreneur and open up a garage workshop, whatever, because that's what's going to happen down the path. AI is going to be taking over all these codings, right? If you look at it, like the aaj ke zamane mein kya ho raha hai? Email likhne ke liye job pe hum ChatGPT jo resub use kare, to socho code to bhuli jao likhna, wo zamana gaya. And slowly. Things are going to change. So these. I was reading one of the studies. Ke bhai, people are panicking. Job yo sab jayegi. Magar ye jo solid, the art of being an electrician and HVAC and like mechanics and handyman contractor. These no AI can do that. Yeah, the tools will make your life easy, but no AI will ever do that. So. Yes, it's a hard work, but again, if you're an entrepreneur, you are passing that business to multiple generations versus if you're doing a job, you just take it with you and your child just starts all over again. So don't kill the dream for the child. Have the conversation what they want to do about this. Like if they genuinely are interested, then, affirm them like, hey, you want to go this route? This is what your future is going to be. Everybody goes through this. Some people don't get guidance. And for an example, I have seen like kids coming from India in the college here and they want to do business administration. अरे भाई उसके बाद में क्या होगा, right? Business administration की degree किस लोगों के लिए हैं, जो पीपल हु वांट टू डू द बिजनेस राइट एंड दे वांट टू लर्न द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ लाइक नथिंग रॉन्ग विद एनी डिग्री इन एजुकेशन बट इज दैट द पाथ यू वांट टू लीव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक हाउ यू वांट टू गो विद दैट देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग आई वॉज रीडिंग के यू नो कॉलेजेस हैव ऐसी ऐसी डिग्रियाँ हैं जैसे मैंने देखी थी गेमिंग की और ग्राफिक डिजाइन एंड ऑल ऑफ दैट ग्रेट राइट बट आई मीन they want to do that because they're playing video games right but uske piche kitna kuch hota hai once they get into it unka interest hi nahi rehta us cheez mein wo bole yaar maine to socha kuch aur tha video game bana hua aur yahan pe to aake kuch aur hi ho raha hai same thing like not everybody can take an economics degree right or like math degree but if you have a genuine interest yes like society needs everything But will you be able to build your future in that kind of degrees or not? But if you are history ke liye reh rahe or English ke liye reh rahe, you are not going to be able to survive in this economy. Bahut difficult hai. You can see the protest happening. I feel for the teachers, right? The society is being grown and being groomed by teachers and, the schools. Or wahin pe itna sab kuch chal raha hai, salaries and all other things are happening. So, yes, you want to talk to them to give them the right guidance, but you can't label your child to just be an engineer. Otherwise, tera kuch nahi hai, right? I also know a couple of my friends, like he was telling me ke, agar tu engineer nahi bana, to khatam. Like, we're not going to give you anything and all of that. Then in the peer pressure, he had to do those things. And he ended up doing this. Like, अभी वो बेचारा बस 8-5 कोडिंग कर रहा है एंड देन दैट्स वेयर द लाइफ इज जस्ट रिवॉल्विंग बट ही ट्रूली डजंट एंजॉय इट एंड इट्स ऑल्सो नॉट ईजी there was a family who one of my close friends his dad was a lawyer और ये बच्चे को भी बोला कि you have to do the law. अभी उसमें इतनी बड़ी बड़ी बुकें पढ़नी पड़ती है, वो बेचारे का इंटरेस्ट ही नहीं है. और now he's working in the court as a clerk, right? Because he ended up being in that domain, but जो उसको बनाना था वो नहीं बना, और जो बनना चाहता था वो he doesn't want to be that. So that is a genuine issue. Think about this, right? It's very important. So थोड़े गाने हो जाते हैं, I'll be right back. We're almost coming up top of an hour, and then you know we'll wind up, and I'll again see you next week. But you know अभी थोड़ा time है, और बातें करते हैं.
1: Yo yo yo.

जी हाँ दोस्तों, सो वी हैव लाइक 5 मिनट्स लेफ्ट एंड आई वांट टू कवर दिस टॉपिक टू क्लोज द शो. वी विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा विद वैन. द नेम ऑफ द शो इज दिल से देसी विद वैन. तो हम यहाँ पे यही बातें करते हैं, लाइक यू नो आई विल कीप कमिंग अप विद दीज यू नो टफ कन्वर्सेशन टॉपिक्स, बट आई वांट टू क्लोज विद दिस थिंग, लाइक यू नो द मेंटल हेल्थ का एक स्टिकर जो लगाते हैं, राइट. आजकल ये लाइक पीपल फील लाइक ये तो क्या है, कुछ नहीं है, लाइक यू नो हमारी फैमिली में क्या, हमारी कम्युनिटी में क्या है, ये चीज़ एक टाबू बन चुका है, राइट. कि हमारे बच्चों को क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी, वी डू सो मच फॉर आवर किड्स, राइट. यू नो ये फीलिंग कॉमन है, ये तो हम इतना प्यार करते हैं हमारे बच्चों को, सब कुछ देते हैं, हमारे घर में तो ये हो ही नहीं सकता. बट द रियलिटी चेक इज राइट, इफ यू लुक एट द गो गूगल एट राइट, यू विल सी द एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. लाइक पेरेंट्स ऑफ द टीन्स राइट, सर्वे में लाइक दिस यू कैन सी हंड्रेड्स ऑफ सर्वेज राइट, रफली हाफ ऑफ द पेरेंट्स 50% दे आर वरीड अबाउट द टीन मेंटल हेल्थ व्हेन दे आर टर्निंग इनटू अ टीन एज, नॉट द चाइल्ड राइट, के बारे में दे आर सीरियसली कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज एट दैट टाइम द चाइल्ड स्टार्ट distancing, talking about their real life issues, what is happening in their mind, the brain, the friends, circle, outside, whatnot. और इंडियन अमेरिकन लाइक यू नो बच्चों के लिए यू नो दिस प्रेशर गेट्स मल्टीप्लाइड राइट. स्कूल परफॉर्मेंस, यू नो कल्चरल एक्सपेक्टेशन, सोशल मीडिया, पीयर यू नो एक्सेप्टेंस, लाइक पीपल आर एक्सेप्टिंग देम और नॉट, लैंग्वेज बैरियर विद ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब एक साथ सब कुछ. इमेजिन अ 14 ईयर ओल्ड गोइंग थ्रू विद ऑल ऑफ दिस. बाद में यू नो व्हाट डू दे वांट टू डू इन फ्यूचर, माई फ्रेंड इज डूइंग दिस सो आई वांट टू डू दैट, दे वांट टू लर्न द ड्राइविंग कार, दे वांट फ्रीडम, शुड आई गो आउट एंड वर्क, looking for internships, kitna kuch bhaji pala pakra hai, right? And this is where if they don't get accepted some of these things, they go through with a lot. Imagine agar aapke boss ne aapka jeena haram kar diya, ek bande ne, to inke saath mein kitna kuch ho raha hai, because they are living in two worlds. So you know these are the signs you don't want to ignore, right? Like bachcha sabse zyada room mein akele baitha hai band karke, they are not talking to you, you are thinking you're giving them privacy but you're truly not, because they maybe trying to ignore you, right? Khana chhod diya hai, ज़्यादा खाने लगा है, लाइक देर ईटिंग टू मच. स्कूल परफॉर्मेंस इज सडनली ड्रॉपिंग, दे वर अ गुड किड, दे सॉ यू सी सडन ड्रॉप. फ्रेंड्स से यू नो कट जाना, देर वो आर नॉट टॉकिंग टू देर फ्रेंड्स, देर आर नॉट गोइंग आउट, देर आर नॉट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, देर आर नॉट स्लीपिंग, लेजीनेस, ये दीज आर ऑल नॉट लेजीनेस, दीज आर साइन राइट, दीज आर द साइंस दैट यू वॉन्ट बी केयरफुल अबाउट. तो बच्चों के रूम में यू नो में जाके पूछ, लाइक यू कैन गो टॉक लाइक हे व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट इज गोना बी वर्किंग आउट मच बेटर देन गोइंग टू अ थेरेपिस्ट डाउन द पाथ, बिकॉज एट दैट टाइम द गेम इज टू ओल्ड एंड इट्स टू लेट राइट. सो with that said, right, I don't want बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, एंड आई डोंट वांट टू बी अ ज्ञानी अबाउट दिस टॉपिक, बट आई वांटेड टू जनरली कम आउट एंड टॉक अबाउट दिस. के I've seen this, you might have observed it, you might feel something is going on, इतनी टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ तो मे बी यू वुड हैव गॉट समथिंग बेटर टू रिमाइंड योर सेल्फ अबाउट, टू टेक थिंग्स ईजी, ट्राई टू गो टॉक. एट द एंड ऑफ द डे एवरी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, एवरीबडी ऑपरेट्स डिफरेंटली, एवरीबडी हैज डिफरेंट यू नो कनेक्शंस, यू नो इमोशनल इंटेलिजेंस, वे ऑफ रिस्पॉन्स, घर का माहौल, एवरीथिंग इज डिफरेंट राइट. सो समथिंग आई वांट टू हाईलाइट आउट, बट यू नो एंजॉय द वीक, एंजॉय द इवेंट्स हैपनिंग आउटसाइड, एंजॉय द सॉन्ग्स, गाने वाने सुनिए, खाइए पिए, आज तो मौसम भी बारिश वाला है, तो हैव फन एंड देन आई सी यू नेक्स्ट वीक. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, टॉपिक्स और एनीथिंग यू वांट टू टॉक अबाउट, फील फ्री टू रीच आउट. आई डू हैव अ स्मॉलर ग्रुप विच इज कॉल्ड दिल से देसी, वहीं से ये शो का नाम आया है. यू कैन गो सर्च इट ऑन फेसबुक, वी आर अबाउट लाइक रीचिंग अबाउट ऑलमोस्ट 18,000 देयर. फील फ्री टू जॉइन, स्टे कनेक्टेड, आई शेयर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर एज वेल. बट विद दैट सेड, एंजॉय योर वीक एंड देन आई विल बी बैक. आप सुन रहे थे दिल से देसी with Van. I'll be back with more new good topics, what is happening around in the area. Until then, stay blessed and enjoy. Thank you.

0: सुर भी देसी है और स्टाइल भी। 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब राली में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपनी प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए सेकेंड एंड थर्ड मे को 4 पॉइंट्स राली डरहम एयरपोर्ट में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।
2: डू यू डिजायर फॉर कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिक ज्वेलरी डिजाइंस टू फिट एवरी ओकेजन? खन्ना एंड सन्स ज्वेलर्स हैज यू कवर्ड फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स। वी क्राफ्ट द प्योरेस्ट 22 कैरेट गोल्ड एंड 18 कैरेट डैजलिंग डायमंड्स ज्वेलरी विद टॉप क्वालिटी एंड फिनिश। वी ऑफर बेस्ट वैल्यू इन ज्वेलरी अलॉन्ग विद टॉप क्राफ्टमैनशिप एंड फेयर मेकिंग चार्जेस। गोल्ड बायबैक, इजी 12 मंथ्स इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग अवेलेबल। कम सी अस फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina or call us at 9193883838.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
4: Namaskar, this is Shankar Mahadevan.
5: Hi, this is Ehsan.
6: Hi, I'm Lloyd.
4: We're coming to Raleigh on Sunday, May 3rd, for a show organized by Arvind and Neha Mahajan.
5: Looking forward to seeing all our fans after a long time in Raleigh.

0: your tickets now.
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruha Pravesh India Property Expo in Raleigh. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR, all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 2nd and 3rd May, 4 Points Raleigh Durham Airport. 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.
3: Namaskar, this is Shankar Mahadevan.
4: Hi, this is Ehsan.
5: Hi, I'm Lloyd.
3: We're coming to Raleigh on Sunday, May 3rd for a show organized by Arvind and Neha Mahajan.
4: Looking forward to seeing all our fans after a long time in Raleigh.

0: your tickets now.
1: सुर भी देसी है और स्टाइल भी 101.9 FM 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: your tickets now.
1: सुनते रहिए रुनहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: your tickets now.
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल, मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: सुनते रहिए 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। ओपन है वेडनेसडे से मंडे शाम 5 बजे से 10 बजे तक। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: Namaskar, this is Shankar Mahadevan.
2: Hi, this is Esa.
3: Hi, I'm Lloyd.
1: We're coming to Raleigh on Sunday, May 3rd for a show organized by Arvind and Neha Mahajan.
2: Looking forward to seeing all our fans after a long time in Raleigh.

मैं एनी। मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

0: your tickets now.
1: सुर भी देसी है और स्टाइल भी 101.9 FM 99.9 FM HD4 और 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए सुनहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। सुनते रहिए रुनहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 4090 AM, पक्का